जानकी जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसको मालूम था आज प्रभु आएंगे, आज सेवा का अवसर मिलेगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। भगवान राम पहुंचे, केवट से कहा, केवट हमें इस नदी के उस पार उतार दो। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, एक शर्त है। प्रभु ने पूछा, शर्त क्या है? केवट ने कहा, प्रभु पहले अनुमति दें, मैं आपके चरण पखार दूं। मैंने सुना है कि आपके चरण किसी पत्थर को लग गए तो उसने अहिल्या नारी का रूप ले लिया। अगर मेरी नाव को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्रभु मुस्कुराए, केवट की चतुरता समझ गए, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे।

भगवान राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं। वनवासी राम सब छोड़कर आए थे। इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, आज तो सेवा का अवसर मिला है। भगवान राम बोले, केवट ले लो, ये मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम सोचने लगे कि ये मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा उन्होंने, केवट जरा साफ साफ बताओ, कुछ बात समझ नहीं आई।

केवट कहने लगा, प्रभु मैं तो इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूं, आप भी मल्लाह हैं लेकिन इस भवसागर के मल्लाह हैं।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: सुनिए
1: आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था, फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

0: Say good afternoon to boy up in the Bronx, USA.
1: पर भंग का रंग जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए आहा और

ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के

0: अपन आपको।
1: देखा जल्दी
2: रॉकी को मुबारकबाद देने।
1: और मुझे
2: आप बैठिए, आपकी तारीफ मैं करती हूँ।